परम सन्मान योग गुरु गरीब निवास वालिए कुल आलम नूरे कायनात श्री कलगी तर दशमीश पिता अमृत के दाती पंथ दिवाली आपे गुरु चेला शमशेर बहादुर जी तख्तां वाले ताजा वाले फौजा वाले बाजा वाले साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जिन्हां दे अमृत वेले तो सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर के वडभागी हो रही सतगुरु जी दी साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ गरीब निवाज सतगुरु जी कृपालता करके धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दी अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार राही अपने चरण कमलां विखे होर सतसंगत दियां घड़ियां बख्शिश करके सभनां नूं होर निवाज रहे ने। गरीब निवाज सतगुरां दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी कथा विचार दे नाल जुड़ करके आत्मिक लाभ प्राप्त करने दा जतन करिए। मन दी एकाग्रता अते मुख दी पवित्रता वास्ते सतगुरु साहिब जिन्हां दा बख्शिश

चंद्र बिम मंगलन सुहाय सरसबान आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कैसवारी पुनियाई दी पक्की बारी कच्छ

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सच्चन दरबार दियां हजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्ताव जो संगता लो बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जीवन रसना दे रखता बख्शनी आसा मनसा संपन्न करनी यात्रा सफली करनी।

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नाभ बीज अच पच को करेंगे भज केत कप्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज रीण ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। उगत फिरत केत रोवत मरत केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग वासी केत मदीना मक्का निवासी केत उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केत जल में रहत केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे जो हजार बोझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पाच हारे पंडित तप

गंग न सुगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न भरमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छे अद्वय अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे कितने कृष्ण से कीट गोटे उपाय।

न नेहं न गेहं स नेहं सनाथ यो दंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनी अक्षयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवं सदा सिद्ध

कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखदि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धर तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के

कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर के पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारडो गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतम प्रभा हो कहूँ छैल छाला थरे छत्रधारी कहूँ राज साजंग धीराजाधिकारी

मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार। कई उर्ध बाह देशन ब्रह्मांत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुजरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब। कई अग्निहोत्र कई पावन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भक्ष नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्निहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सुभरम कई अग्निहोत्र कई

कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जो करियत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्ग दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई वचन।

देह राग न रूप न रेख रुखं देह ताप न साप न शोक सुखं देह रोग न शोक न भोग भुयं देह खेद न भेद न छेद क्षयं देह जात न पात न मात पितं देह रज्यं क्षत्रिय छत्र छितं देह राग न रेख न रोग भणं देह द्वैख न दाग न दुख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नवखंड सचियो रजता मस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधुर बिंद नगिंद नगं श्रेय जाच गंधर्व मणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न व्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुअंग जेह जम्पह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जेह अंडज सेतज जेर रजंग रज भू आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास तंग रज रोज एकादश।

भूत मतंगन गाध व्याद अनाद मतंगन खेद भेद अछेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिद्ध अधोमुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकण धर्म सफेत जय एक चित्त कृपा निध को जप है तु या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुति जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है।

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोग ताग दग है, अभूत ब्रह्म वेग है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेक शेख भेक है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिबीजमान के भिखे सदीव करम भरम है, अद्वैख है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में।

रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जाच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है या जन्म है या वेग है न दात है न मात है या ख्याल खंड रूप है।

रंग है न संग है न साध है, ब्रया है पवित्र है पुनीत है ब्रह्मात है, न शीत है न सोच है न घ्राम है, न शीत है न सोच है न घ्राम है, न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है, न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है, न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, न द्वैत है न भेद है, न दुई है न द्रोह है, न काल है न बाल है।

हस्त गेट बिखे बसे सब ठौर मैं निर्धार। जात पात न तात जा को मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चयन न चित्र। आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जाने जे मरम वेद कतेव सनक औसन केस नंदन पावे ही न सेव। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत मुकार ही सेव सकर मुख चार। सर्व सबद बतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाध तेज अनाद मूर्त अताप। चंद्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज राज राज प्रवीन। जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भीर भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूम आकाश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गौर के नाधीन। सर्व सबद बतार के तर जानिए जह जोत सेत नाम सहंस फरण नेद पूरण होत। सोद सोद हटे सफ सुर।

देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूमा का जले थले महबानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकांद अघाओ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के व्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन।

नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहां सृष्ट को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुखुड़ा को मूढ़ता कहां तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कव...

डावरू डबंगे बबर बवंगे भुजाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके यत सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन रंभक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फुरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा कासल उर्ध्व थे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूट गते रक्तासुर आचन युद्ध ब्रह्माचरण नराजन धर्म वृते श्रोणंत चिंती अनल विमंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणि अर्फुंकारण बाघव कारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहदे सन्ना

संचंद प्रकाशन सूर्य प्रतिजन अष्टभुजे जय जय हो से महासुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे गुम गुरु घंकण सहस्र मंगण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे जग मथा हे एक वृते जय जय हो से महासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब डौर निवासन।

गादूर्धं घंट का बिराजे रुंझुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विख बाजे सुकूप राजे मधुरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन विज्जे सब न भज्जे रूह रणन जय जय हो से मैं खा सुन वर्दन चंड चक्र दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज प्रध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती सद्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो से मैं खा सुन मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते विडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो से मैं खा सुर मर्दन विश्व विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अदल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर खंड दुष्ट प्रधर खंड बितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो से मैं खा सुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट व्रता हे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खा सुन मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गही ली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद प्रते डुक डुके दमंगे बाघ बंके हुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भट्टे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंड।

जानी न जाए जह रूप रेख कहे वास दास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जह सत्र मित्र नहे पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय जकर चेहर नहीं रंग रूप जय खेद वेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल और धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल मही बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नित संतु बार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नरात सर्व समय सबको व्रत पारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दुखन कौदल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमावत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अहं देव न भेव लख्यो ब्रह्म शिव वरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना

लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मा पद ये है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त अगे है छे है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा पतल है। रोकंते अर सोकंते जल जोगंते व भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाव समूहन भेटन पावे। और की बात कहाँ कह दो सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहों को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद गते वर भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तेह को मन मै जह को अमितूज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब है पजहारे। वेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद अभेख अद्वेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश विदेव कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुखकारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया क्षेत्र छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया ओ विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे। गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेली तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माघ देश के मंगेली वीर भंग सी बुंदेल बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस ने आवे तिब्बती धे आये दुख देह के तलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार दे जुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचत दाही चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते सस राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करते हैं विचार पर न पूर्ण को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानिये। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए। जंत्र हूँ न जात जय के बाप हूँ न मायता के पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के कजानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है।
काम को कुनिंदा है कि खूबी को दिहंदा है गनीमन करिंदा है कि तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है कि सत्रन के साल है कि मित्रन को भोगत है कि वृद्धता की बासी है जो गुहू को जंत्र है कि तेज हूँ को तंत्र है कि मोहनी को मंत्र है कि पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है कि बुद्ध को प्रकाश है कि सिद्धता को वास है कि बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है कि शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को देवैया है जमजाल को कटैया है कि कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है कि स्त्री है नर है विश्व को भरण है कि आपदा को हरण है कि सुख को करण है कि तेज को प्रकाश है पाइये न पार पार वार हूं को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विध्या वह पूर्वी न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूमि के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है थरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छत्रानेर छपा कर कैसी छव कालिंद्र के कूल के हंसनी सी सिहारुम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चाली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदगढ़ के रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हल बने रहस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी विलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भक्री कंधारी गोर गखरी गिरदे जचारी पौन के हरि तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र देता बिना धकीर

हर हर नाम मिलै तृपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवै ध्रग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संग।

तेरे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकण को सिव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोहब्बत कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जावद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आ करख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों, जेते बदन सृष्ट सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महा मूड कश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सुदास, निरंकार का छीनत नहभ, आप आपनी बुध है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखान जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्बज खान बहर रच दीनी, काहूं फूल राजा हुए बैठा, काहूं सुमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच्छ करो ऋण घाता, जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं, रक्षा होए ताहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छै सकै न कोई, एक बार जिन्त मैं संभारा, काल फांस ते ताहें उबारा, जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैल हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छाय करता, श्री अजदुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख नात सह व्यापत कोई, अड़ल सुनै

चौपई को कह चौपई सम सतरह सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मैं नागन सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं कान सुने पहचान न तिनसो लिवलागी मोरी पग इनसो

आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब

बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्यान है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय, सब सिखण को सो

बनाए अवर बास नाना है प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद बिचारे देह अनत नानत रह जस नाव चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सदीपक ज्यों जियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत स्वर्ग बा स्वर्ग पर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर।

0: जन प्रवान
1: प्रभ को सिमर से पूर्व प्रधान
0: को सिमर से सब मोहताज
1: प्रभ को सिमर से सर्व के राजे
0: को सिमर से सुखवासी
1: प्रभ को सिमर सदा विनाशी
0: सिमरते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जनकी मगर वाला
0: को सिमर से पर पुकारी
1: प्रभ को सिमर सत बलहारी
0: को सिमर से मुख सुहावे
1: प्रभ को सिमर

0: का वो व्यापार
1: अनंत तल का कृष्ण नाम द्रापे
0: एक अनेक अगन नहीं पूजे
1: कोट पाद नहीं सीजे
0: छूट नाही उपप्या
1: मोह व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जम डाले
1: गोविंद बदन मिल दिल नहीं माने
0: हर का नाम जब दुख जाए
1: नानक बोले जय

0: शोभा लोरे
1: सा संग हमें चोरे
0: एको जन्म मरण ते डरे
1: साजना की सरनी परे
0: जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके भल भल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सा संग का मिटे अभिमान
0: आपस को जो जान

0: निर्जन सम दृष्टिता
1: नानक पाप नहीं ले पा
0: निर्धन को धन तेरो नाम
1: हितावे को नाव तेरा ताऊ
0: निमाने को प्रभु तेरो

0: साज सवार सिंगारिया
1: गर्भ गन में जिन्हो बारिया
0: बार विवस्ता तुझे प्यारे दू
1: बजो बन भोजन सुख सुध
0: पायाऊ पर साख सन
1: मुख प्या भेट को दे
0: निर्गुण गुण कछु न बुझे
1: बजो तो नानक सीजे
0: जे प्रसाद हर पर सुख बसे
1: सूर प्रादित पंता सखसे
0: जे प्रसाद पीवे सीतल
1: जल सुखदाई पवन भाव कमला
0: जे प्रसाद पोगे सब रस
1: सकल सामग्री संसार बसा
0: दीने हाथ पाव कन्ने तरस
1: त्याग वर्ष रचना
0: दुख मुड़ान दबे आप

0: सत्य सागे राखे,
1: सबकी आज्ञा माने माते,
0: चौगुन करे निहाल,
1: नानक साहे सदा ध्यान,
0: बात माया के है
1: सर्परो वचान ने,
0: की छाया शिव रंग लावे।

0: रन दिन रहन बिरथा बिहार
1: मैं बिना जो कहती जाए
0: भजन बिन बिरथे सब काम
1: जो कृपा के निरार धाम
0: जय घट वसी और नाव
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: तवर कच और कमावत
1: मन तीर्थ को गण लावा
0: नहार प्रो पर भी
1: पार बेक न काओ बेन
0: अवर उपदेश आप न करे
1: आव जाव जन में मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख करे संसार
0: बाने तिन प्रभु जा

0: प्रभु शरणागति
1: कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे
2: जय प्रसाद क्षेत्रीय अमृत खाए
1: ठाकुर को रख मनवावे
2: जय प्रसाद सुगंधत धन लावे
1: इसको सिमरन परम घट पावे
2: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
3: जय सदा मन अंदर
2: जय प्रसाद रह सुन सुख बसना
1: आप पे सिमरो किस रसना
2: जय प्रसाद रंग रस भो
3: दानव सारी आई
1: क्या मन जो
2: जय प्रसाद पाठ पटम बरड़ावे
1: जय त्याग का तवल लुभावे
2: जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मना पड़ता का जल गावे
2: जय प्रसाद तू सबको माने
3: मोता को जय सो सर्व खाने
2: जय प्रसाद तेरो रहता धर
1: मन सदा ध्याय केवल पाव ब्रह्म नानक पसति घर जावे लीलाओ सुसाम सने
2: जय प्रसाद तेरा ओला रहे
1: मन सुख पावे हर जस कहे
2: जय प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके
1: मन सब निपटा को प्रपता के
2: प्रसाद तुझको न पहुंचे
1: मन

0: जय प्रसाद के बिस्मार
1: जय प्रसाद बोले अमृत
0: जय प्रसाद सुसा जय बसना
1: जय प्रसाद हसत कर चले
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुसा समावे
1: जय प्रसाद
0: नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मोला मनो विसार
1: जय प्रसाद तेरा परता
0: जय मन मूर्ता को जाप
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे
0: तिजे जान मन सदा जुरे
1: जय प्रसाद तू पावे सार
0: रे मन मेरे दास यो राज
1: जय प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपे जब सोए
1: आप जपाए जपे सुनाओ
0: आप हमारे जो हर मन गाओ
1: कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु याते कमल विकास
1: प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए।

कबो मोहतारी लावे ध्यान, कबो शिक्षा तक मो ज्ञान, अनंत जानवर में भरमिया, जो प्रभावे दिवे न चावे, नानक दूजा वर न कोए।

0: अष्टपदी
1: सन के दुखन हर जा घटे
0: सन के दुखन जब दे नहीं छूटे
1: सुख सब जाए
0: सन के दुखन नरक में पाए
1: सन के दुखन मत होए मलिन
0: सन के दुखन सो बाते हैं
1: सन के हते को रखन को
0: सन के दुखन दान भ्रष्ट होए
1: कृपाल कृपा ये करे
0: नानक संत निंदक भी करे
1: सन के दुखन ते मुख पवे
0: सन के दुखन काज जो लवे
1: सन के दुखन सब जोन पाए
0: सन के दुखन त्रिगजोन के पाए
1: सन के दुखन कृष्णा में जले
0: सन के

संत का निंदक परमेश्वर महाराज, संत का निंदक दुखिया दीना, संत के निंदक को सदा बिजो, नाना संत पावे ता उसका भी है मौका, संत का दुखी किसे का नहीं मिलता, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी सदा भिखारी, संत की दुख ना सुख ते डरे, नानक संत पावे ता नहीं मिलाए, संत का दुखी किसे काज न पहुँचे, संत का दुखी उजड़ पाइए, जो सांस बिना मृतक के लोता, आपन भी जापे ही काए।

0: निरंतरम तेरे
1: संता दो की सत मिथ्या कहत
0: कीर्तन धक्का धुरी पया
1: नानक ज्योति पावे सोई थिया
0: संता दुखी बिगड़ रूप होई जाए
1: सन के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संता दुखी सदा सहकाई
1: संता दुखी न मरे न जीवाए संता दुखी उचारे निराशा जैसा पावे तैसा कोई होए
0: कीर्तन मिटे कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसके हो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: सत्रो दिन रात
1: तिसे दिया वो सास गिरा
0: सब कुछ वरते तिसका।

0: सत सत परसन हार दर्शन सत सत पेखन हार आप सत सत सबदारे सबद सत सत प्रभ वक्ता भोजन हार को सत सब होए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया बहते निर्भो होए बसाना
1: जिस जोग जत इस माहे समाना
0: बसत माहे ले बस

0: सेवक जाने संग,
1: प्रभु का सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रभु पालन हारा,
1: सेवक की राखे निरंकार,
0: सो सेवक जिस दया प्रभु धारे,
1: नानक सो सेवक साथ साथ समारे,
0: अपने जन का पर्दा ढाके,
1: अपना सेवक के सर पर राखे,
0: अपने दास को देव डाए,
1: अपने सेवक को नाम जपाए,
0: अपने सेवक की आपत राखे,
1: ताकि घर में कोई न लाके,
0: प्रभु के सेवक को कौन

0: पुराण विवेक आगम बोध प्रभ निर्वाणे
1: निधार निर्वैर
0: सुखदायी कीमत किने न पाए
1: अनेक भगत बंधन नित करे
0: तर कमर हृदय सिमरे
1: सत परिहारी संत गुरु अपने
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: हर रस पावे जन कोए
0: अमर पीवे अमर सोए
1: उस पुरक का नहीं कदे बिना
0: जाके मन रखे गोंदा

0: जिस धन को चार कुंट धावे जिस सुख को नित बाछे मीत
1: साधु संग परित
0: जिस शोभा को करे भली करनी।

0: असत वेद विचारे
1: हर की भगत करो मन लाए
0: मन बचत नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे धना
0: तू क्या लपकाए मूरख मना
1: सूत मीत कुटुंब अरबंता
0: इनते को तुम कौन सनाता
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते को कौन छुटकार
1: असहस्ती रथ सवारी
0: झूठा ढंग झूठ पसारी
1: जिन दिए तिस बुझे न बिगाना
0: नाम बिसा नानक पस्ताना
1: गुर की मत तू ले आने
0: भगत बिना बहु डुबे से आने
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन मान
0: जनम जनम के गिर बिक जाए
1: आप जप हो और नाम सार भूत सत हर को
0: नाम सुबह नानक गुण गाओ
1: गुण गाओ तो तेरी उतर समाए
0: जाया
1: होए अचिंत बसे सुखना।

0: सिमर सुख
1: पाओ, जपो रा नाम जपाओ,
0: भाई तरे संसार
1: दिन भक्ति तनो सिचार,
0: सर्व कल्याण सुख निद नाम,
1: बूढ़ा जात पाए विश्राम,
0: सकल दुख का होवत नाश,
1: नानक नाम जपो गुणता,
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
1: मन तन अंतर ऐसु आओ,
0: नेत्रों पे एक दरस सुख होए।

0: भगत वचल सदा कृपा
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
0: सर्व घटा करत प्रतिपाल
1: कारण करता
0: भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपे सो होए पुनीत
0: भगत भाव लाव मन हित
1: हम निर्गुणिया नीच जान
0: नानक तुमरी शरण पर भगवान
1: सर्व कुल मुखत मुख पाए
0: एक निमक हर के गुण गाए
1: अनेक राज भोग बड़ी आई
0: हर के नाम की कथा मन भाई
1: भोजन का प्रसंगी
0: रसना जपति हर हर नीत
1: सुकरणी शोभा धन
0: हृदय बसे पूर्ण गुरु मन
2: साध संग प्रभ देव निवास
3: सर्व सुख।

एक ओंकार सद्गुर प्रसाद जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनेक बात होए पसरिया नानक एक अंकार पोड़ी एकम एक अंकार प्रभ करो वंदना ध्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दें दिस भ्रमयो तिस बिन अवर न कोए वेद पुराण सिमरत सुने वो विद करो विचार पति देव

जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गा। गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए सा।

भजो गोविंद भजो बाओ भगत परवेश लाभ मिले तो टाहिरे हर दर गए पतिवंत राम नाम धन संचवे।

सगरी जैसे दिखाए चंबा अब रक्षा मेरी तुम करो दुष्ट से उठवा तुत पाता ये तू जो जानी परे पुरख जवन पग परे त्यारे जो कल को एक बार त्यारे रक्षा है दाए जब काला कृपा दिशन जाए नेर हो जीत जीत कर मौत होए एक बार जिंद

परम सत्कार योग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते साहेबां दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब विखे आप सारे ही पावन हाजरियां पर रहे हो। आप सारे ही धनता दे जोग हो, बड़े भागशाली हो जो अपने प्यारे दे याद दे विच जुड़न वास्ते बैठे हो। साहिबां दे पावन शहीदी नूं समर्पित पिछले तीन दिनों तो समूह साध संगत वालों गुरद्वारा बोर्ड वालों श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ चौपाई साहिब जी दे पाठ उपरंत कथा विचार लगातार हुंदी आ रही है। अज चौथा दिन है। कल आने वाले कल नूं साहिबां दे पावन शहीदी दा गुरपुरब समुचे सिख जगत दे अंदर बड़े प्यार सत्कार ते श्रद्धा नाल मनाया जावेगा। आओ आपां अपने समय दे विच्चों थोड़ा जा समा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन चरणा दा ध्यान करदे होए सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे शहीदी दे बाबत कुछ विचार वटांदरां करिए। जे ते सतगुरु दे कीते होए जड़े उपकार हन उन्हां दी जे गिणती मिणती कीती जावे तां कोई साडे कोल संख्या नहीं कि असीं गिणती कर सकीए। साडे कोल कोई भाषा नहीं जिस भाषा दे विच आपां सतगुरां दी उपमा कर सकीए। साडे कोल कोई बुद्धि नहीं सामर्थ नहीं है जिस दे कारण करके आपां सतगुरु महाराज जी दी उपमा वड्याई कर सकीए। ते आपां की कर सकदे हाँ जिवें बहुत वड्डे महासागर दे विच्चों एक बूंद दा अनुभव हो जावे तां वड्डी गल है। आपां केवल बूंद दा अनुभव कर सकदे हाँ। आओ चित बृतियां नूं एकागर करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दी जिहड़ी पावन शहीदी गुरपुरब कल मनाया जावेगा उस दे बाबत तुसी पिछले तीन दिनों तो लगातार विचार कथा इत्यादि सुन रहे हो। अज आपां थोड़ा जा चिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का जिहड़ा पावन पवित्र जीवन है उस जीवन दे दर्शन करन दा जतन करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का समा ओ समा से जदों भारत की हालत जड़ी है बहुत माड़ी सी। मुगलों का जोर से सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए उस तो पहला ही गुरु महाराज जी का विरोध आरंभ हो चुका सी। जिवें उन्हां दे अपने वड्डे वीर वड्डे भ्राता पृथ्वी चंद ने सब तो पहला विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वह यह समझदा सी कि मैं उम्र दे विच वड्डा हाँ, इस करके गुरता गद्दी का जिहड़ा अधिकार है वह मेरा है। पर गुरु घर दे विच उम्र करके कोई वड्डा होवे तां योग्यता नहीं है, जे गुणा करके वड्डा होवे तां योग्यता है। जिवें के गुरु नानक देव जी पातशाह महाराज ने भी अपने साहिबजादियां नूं गुरता गद्दी नहीं बख्शी। गुणा दे आधार ते धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी बख्शी। उही परंपरा उही मर्यादा अगां नूं चली है। गुणा दे आधार ते पंचम पातशाह महाराज जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान किया गया। चौथे पातशाह महाराज पिता सतगुरु सच्चे पातशाह
धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने आने वाले समय दे विच पंचम पातशाह महाराज जी नू की कुछ करना है इस दा दिशा निर्देश भी किया। जिवें सरोवर की सेवा चल रही सी तां पंचम पातशाह महाराज जी ने हरिमंदर साहब जी की नींव रखी ते नींव रखी किस दे हत्थों।

घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आप जी दे पावन पवित्र स्थान, तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब विखे, तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धरन गगन नौखंड में ज्योत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कर भेद नहीं गुर अर्जुन प्रत्यक्ष हर। ऐसे दीन दयाल सदगुरु, सहिता दे सिरताज, बाणी के बोहेत कलयुग के जहाज। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दा, शहीदी गुरुप्रभ हजूरी खालसा समूसा संगत वल्लो महाराज। आप जी दे पावन पवित्र स्थान विखे, समूह संगत ने रल

सो हमरी रक्षा करे गुर कलगीधर, सो हमरी रक्षा करे गुर कलगीधर जगदीश बोले।

जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु